0: Benjong Ji Yong Ki Pegye La Ngoi Bang Raju Rakzam Yong Si Be Xiang La De Kor Ki Zhe Kor Di Se Ro La
1: Ngo Gen La Ngo Su Kim Tsang La Ben Zhe Xia Tang Na Ta Ngo Su Ge Abba Ti Xiong Doi Na Kim Tsang Bu Ge Mang Bo Yong Jo Ki Kim Tsang Ki Bu Ge Zhe Ri Da Gen La Ti Tu Zhu La Zha Wei Xiang Na Kim Tsang Mang Xie Zhe La Xia Xin Di Jia O Ma Zhe Dong Gen La Ten Zhe Ngo Su Ko Tu Dong Gen La Yi Ne Ti Nang Le Ta Nung Kyo A Zhe Ki Kim Tsang Ki Bu Ge Ri Da Gen La ओ चेक तेरे ये आमा शुरू था नहीं ये रहता क्या ना अम्मे के मात लिखा सुन दे अम्मे के मात ही के ता प्यान जग ता कहता नहीं है अमाय चटो तों दे ले शिदी ता निके चुआ मेमी रंग ला आ तेरे पास शुरू है ना तीन की तीस ता वसा में ता क्या ना ता ते मेरी ता तेरे के ओ ले ता मुसु नाला पुक नीचों लगता है वो ना ता कहता ने लेगा पाइन लेगा माइन जोरेस ता ये तीतां तो जी में तक ना तो दूसरे जो यंग समझे लेगा पाइन लेगा मत कहता ने पाइन ही दिखे लक्ष्य तो प्रयोग कर लाभ हो ना ता कहता ने क्या तो रंग मार्ज लेके शायद रे तक ना तेंसा शुन ता लेगा पाइन इंसान में तो लगता है जान कुरी तो ता तो दूसरे लोग सोते नहीं जाते ये ता लगता है बाबा जोजी जावरे गेन मो बाबा जोजी तेंदे गेला सर जोंस यो जंगा ते जांदी तिरे निमा रे नि जेल तो बाबा जेबदा जेबदा ता जो बाबा जोजी जांग मे दा मेबा शिग दा जाग छ छोंग ति दा मेबा शिग रे मेबा जोज दा देंगे जे जो गन ने जे सो नि गन ने हिन द कोगर शेवे गे मजा रे दोरे ता ते जे मेबा ठा छ छोंग ता ता खांदा ने रेया रे दोरे ता ते जांग गुरे ममा दा जेरकप गन सा ल पेन थोंग गिंग मे ता ये कोई ना इन जोर ती ने उस के के ममा दा जेरकप ल पेन थोंग गिंग मे रे नि मे बा जान ती के र मे बा जांग आ रे गला तो
2: छि दे
1: रे गला ते छि मुसु किम सा छन जन ना तो ती अबा छन जन ना ता खांदा ने nga do nam ya lan ne chen shu le mi ma ro pa to le mi yo kon ro da gen la ta de de cha cha go ra hi gna go ra zi ro ndo kan ba hi gna kan ba zi ro ndo o ta yang te kan ta ne de zi tren hi hi hi zi ngo zo zo ro gen la de de hi gna yang ro tra tra ndo tre ta te zi te zi ko su ge lu chu ta te ro de ge da ta te ne ta te ne shi ka su ta zo jo jo ri ho gen ri gen la ta ting san chen zo sha yo gna gen la ta kanta ne xie sa mudaw ligi ye tuzu zi tog zi na ta ngongo xio di shun zidong gila dine ngongo mara ngusung mara gyo le rangi pa himsa ngar duk xie che sandu na ta tisa dingi jibhyang xin zhodo gyo le tundru gyo tsuwa zi
2: yan
1: zu ta shun ju gangla yan gup tudu zama ta mang che tsuwa gyo burba ri gila yan kangba gyo bu yu gyo yan ma nyama duwa पोतो पां पाई की
2: ओम सबा में जे पां दुन
1: पां का ही के तुने चखे तेरे छोर जोन द के जब खान मुसु के जब तने के पा दे तेरे जब खान जो तेने छोर छोर सी नी तो छोग लोंग गुजुल यरकब के ता सी जी तों द के ता न रुपी के खावा छामा लोता तने ये दोहान ला जोर रे के ना तेरे सी ता कांदा ने छोवा तुजु के जुरम के ना रान सम लो कर थिंग सा मा मेक जम द के जान के छों दे ले जाओ मा के ना गुजु छोए के ल मो ये ता फामे के ले जाप के ले जों इन ने सम लो कर जे छो छो के वो अंदर जरे दा सम ता तने जिन तो रान के ता कांदा ने ये ने की मसा ले जिन तो तने ले ता
0: Pela shiwi jingzhi tangzhi, penchong ki shirim kala, mendun chenpa neba ne yueba dan, yueba ne rimshi, tuigu changdu chindi, shirim mangcho ki detam sungyo la, lana mebe legi pyu yubari. Abordu, chobe jalam shardung tuba di, menju yoje dutodo pela onre tubni, shirim ki menju chajin leju tuba gangshi. Rogyu top deuro chimbe, penchong ki mirika ki nima ki detam la, yesu tu yubari. Rogyu top deuro chimba dan, menju yoje tuigu changdu chimba di, 加急行政满足的地当当所以恰经离去的女不刚的退运面过了很多难关了下面就直播的赛罗了
2: 你撒在肯定这边,
1: 普通中中, 那是重建了,生意去过路重大了 바람도 총소게 여름 탑사탕부 강진게 총소 멤버식탕 강진게 종절와히 인기라
2: 아 표시외 진도당에 너무 뒤주 뒤에 나와야다 기란지 농벌이야 균도 근데 친구게
1: 다 모수 탈로 폴라나 포기외 진도당에 롱어 드슈 통화 거비 뜻도 언더 저거 나라 다 나랑게 하코 히하코 렉도사즐라 다 나서 콜렉션으로는 폐지 인슈 모수 니통 제니 솜예 나 제주라다